एस आदि फ्लाग हबर को साथ में हिमाल सुनचांदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनचांदी पसल वालिंग बजार सैंजा

भावपूर्ण श्रद्धांजलि। यस आदि खोला संचार सहकारी संस्था लिमिटेड रेडियो आदि खोला 105.4 मेगाहर्ज वालिङ 8 स्याङ्जाका

0: सुनत ना, आइए हम लोग देरी बजे कच्चा
1: समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच घरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।